0: शिकारी थाते
1: थाते
0: शिकारी थाते शिकारी थाते थाते शिकारी थाते शिकारी थाते
1: थाते वो ये मेरा ये मेरा ये मेरा
2: जाता है烧
0: 你才看出来吗我就是在耍你们谁看着他的
2: 我这个野郎啊
1: 阿姐
2: 姐你会死的
0: 老同学我告诉你我根本就没有打算签这个字
2: 你再侮辱再侮辱我们帝国军人！
3: 是，
4: 我知道，阿泰。
0: 你们也知道侮辱吧？啊！开枪打死我！向你们上级汇报，你们受到了侮辱。是可杀，不可辱。
4: 落ち着け。
0: 你们不配上。

0: शिकारी थाते
1: थाते
0: शिकारी थाते शिकारी थाते थाते शिकारी थाते शिकारी थाते
1: थाते वो ये मेरा ये मेरा ये मेरा
2: जाता है烧
0: 你才看出来吗我就是在耍你们谁看你的腿
2: 我
3: 这个野郎啊
1: 阿姐
3: 姐你会死的
0: 老同学我告诉你我根本就没有打算签这个字
2: 你再侮辱再侮辱我们帝国军人！
3: 是，
2: 知道，阿泰。
0: 你们也知道侮辱吧？啊！开枪打死我！向你们上级汇报，你们受到了侮辱。是可杀，不可辱。
2: 落ち着け
0: 你们不配上我